0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
2: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल ले अवेला जी सुनत अमल ले
3: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई मां मायूसके गई मां अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी दा तशरीफ रावड़े औ द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: औ द नूरु मालूमातो दे पारा पदग नंबर कॉल कवले शे
2: 0319 55 23 404

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Dear Ismail Khan Radio Pagam 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. जनाब तीन स्टेशन और एक आवाज और सफेद के चार बज चुके हैं जनाब और रोजाना चार बजते ही जनाब तीनों स्टेशन से एक साथ आपको ये आवाज सुनाई देती है जो कि है केसन नेचुरल पाकिस्तान की आवाज जो है खूबसूरती की आवाज जो है सेहत की आवाज और जो है शिफा की आवाज तो तमाम सुनने वाले कजिन बॉयज एंड अंकल एंड आंटी चाचा एंड चाची मॉम एंड मामी दादी एंड दादी नाना एंड नानी जो जो हमें जनाब इन तीनों स्टेशन के ऊपर जहाँ जहाँ सुन रहा है जनाब तमाम सुनने वालों को खलील ताबे शाहवान के सलाम ढेर सारी मोहब्बतें चाहते दुआएं आप सभी के नाम और जनाब आप सबको ढेर सारा वेलकम केसन नेचुरल पाकिस्तान के इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम टाइम में ढेर सारा वेलकम जनाब मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जनाब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे अफियत के साथ होंगे और इस चिल मिले मौसम के साथ जनाब जबरदस्त से मौसम के साथ जनाब जबरदस्त किस्म का वेदर जो है इस वक्त मेरे ख्याल में के जितने भी स्टेशन के ऊपर मुझे सुना जा रहा है ठीक है ना चाहे वो देहरादून है चाहे पहाड़पुर है या फिर वो डांग है जनाब मौसम बहुत ही जबरदस्त है और कल की तरह कल भी इसी वक्त हमारे शो के दरमियान बारिश हो गई लेकिन जनाब पराने रहमत होगी जनाब थोड़ी सी बारिश जो होती है हल्की फुल्की सी बारिश जो की आपके माहौल को ना सिर्फ बाहर के माहौल को बल्कि आपके अंदर के माहौल को बदल दे तो जनाब बहुत ही अच्छा लगता है तो आज भी ऐसा ही कुछ होने वाला है क्योंकि जनाब लग ऐसा रहा है कि जनाब आज की बारिश जो है मजीद मौसम को खुशगवार करने वाली है तो जनाब जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपने इलाके का एफएम किए रखिए और इस शो को जनाब ऐसे नहीं सुनिएगा ठीक है जनाब ये टी टाइम है और इस टाइम में जरूरी होता है लाजमी होता है कि जनाब इस शो के साथ आपके हाथ में जनाब एक अदद चाय के कप होना चाहिए जिस तरह की आज बिल्कुल जी मेरे सामने आ चुका है जनाब और बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म चाय भी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि जनाब जो क्या बात है बाजुकात ये होता है कि छाले बढ़ जाते हैं मुंह में और बहुत ठंडी भी नहीं पीनी चाहिए हमेशा म्याना रवि के साथ और म्याना रवि के काम जो है जिंदगी में करने चाहिए ना ही बहुत ज्यादती होनी चाहिए किसी चीज के अंदर ना ही बहुत कमी होनी चाहिए ना ही बहुत ज्यादा मीठी ना ही बहुत ज्यादा कड़वा पानी तो जनाब चाय को भी अपने वक्त के ऊपर पीना चाहिए एक वक्त होता है चाय का कि जनाब जब चाय कहती है कि जनाब आ जाओ मुझे पी लो तो जनाब मेरी चाय मेरे सामने आ चुकी है लेकिन मुझे लग रहा है कि जनाब अभी इसका टाइम नहीं है अभी चार मिनट इसे और वेट करना पड़ेगा जनाब केसन नेचुरल पाकिस्तान जी जनाब नाम सुन रहे हैं इस कंपनी का आप लोग और केसन के साथ जो है नेचुरल्स लगा हुआ है अक्सर जो है कॉस्मेटिक की कंपनियां जो होती हैं वो साथ में लगाती हैं कॉस्मेटिक्स लेकिन हम कॉस्मेटिक्स नहीं लगाते हम लगाते हैं केसन नेचुरल्स पाकिस्तान क्या मतलब होता है इसका जनाब तो इसका मतलब ये होता है कि ये कोई ऐसी कंपनी है भाई जो कुदरत के बहुत करीब है जो नेचर के बहुत करीब है और कुदरत के बेशुमार राज जानती है ठीक है जनाब और उन राजों के अंदर आपकी खूबसूरती है आपकी हेल्थ है आपकी सेहत है तो जनाब वो सारे खजाने हमारे पास हैं हम अपने प्रोडक्ट से सूरत में आपकी तरफ लेके आते हैं जनाब और प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जनाब ढेर सारे फायदे आपको मिलते हैं जनाब हम कुदरत के जो शाहकार हैं कुदरत के जो खजाने हैं वो आपकी तरफ जनाब आपकी दस तरफ में पहुंचाते हैं वो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की सूरत में

0: अच्छा ठीक है, यूं आप हमारी टांग की लिसनर हैं, तो बहन आपको ढेर सारा अपने शो में वेलकम करते हैं। कब से सुन रही हैं आप हमारा प्रोग्राम?
1: भाई मैं आपका शो रोजाना सुनती हूँ और आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं।
0: अच्छा चलो, अच्छी बात है कि आपको मैं पसंद आ गया और मेरी बातें अच्छी लगती हैं। हमारी प्रोडक्ट इससे भी ज्यादा अच्छी है, पता है आपको?
1: भाई हम राजा कपूर का पता तो बता दे सही से।
0: राजा गफूर का पता?
1: जी भाई आज हमने वहां से प्रोडक्ट खरीदने जाना था और आप इतनी बारिश हो रही है नहीं जा रहे।
0: अच्छा जी, राजा गफूर का जो एड्रेस है वो पंजगिराई में है, उसको बोलते हैं जनाब कंडा सादात, जो है ना सादात का कंडा जो है, ठीक है? आप पता करेंगे ना सादात का कांटा जो है ना, जिधर लगा हुआ, जहां पर वजन होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों का, ठीक है जी?
1: जी भाई
0: सादात कांटा पता करेंगे, पंजगिराई के अंदर सादात कांटा जहां पर है, तो वहां पर उसके साथ ही है राजा गफूर की, हमारे प्रोडक्ट उनके पास सारे के सारे होते हैं, आप उनसे जाके खरीद सकते हैं, ठीक है रिमशा?
1: भाई मैं जो क्लास से बात कर रही हूँ।
0: मुझे तो यही तो समझ नहीं आ रही कि ये इलाका टांग की तरफ है या पंजाब की तरफ है।
1: नहीं भाई पांच किराए की तरफ।
0: पानगिरी की तरफ है, तो आप फिर तो आप 91 को सुन रही होंगी, ग्लोबल एफएम 91 को। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आप बस पानगिरी से हैं, तो पानगिरी के अंदर ही ये पानगिरी के पास हमारा ये राजा गफूर है ना, उधर ही होते हैं भाई साहब, और सादात कांटा का पता करेंगे, सादात कांटा उसके साथ ही इनकी दुकान है, ठीक है? ओके जी, बहुत शुक्रिया रिमशा, हमारे साथ ही बहुत अरसे से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ऐसे मैं जैसे समझ रहा हूँ टांग की तरफ से, लेकिन ये 91 के लिस्टनर थी हमारे साथ। तो क्या बात कर रहे थे भाई, बात ही भूल गए हम, हैं जी?

ये बिस्मिल्ला पैकेज जो है टांक वालों के लिए है, और ये जो रमजान मार्केट है या फिर सदाम प्लाजा है वहां पर मंसूर जनरल स्टोर है हाजी जरबत खान के, किसी से पता करेंगे, शॉप नंबर 4 और 5 है। ये ऑफर सिर्फ आप लोगों के लिए और ये ईद तक होगी, ईद के बाद ये हम खत्म करते हैं। 1000 रुपए के अंदर 3 चीजें आप खरीद सकते हैं, या अपनी मर्जी की 4 भी खरीद सकते हैं। लिप ऑयल हमारा 100 रुपए का है, सोप हमारे सस्ते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको जो पैकेज बताता हूँ कि ऑयल शैम्पू और क्रीम खरीदें, क्योंकि साथ में आपको साबुन और परफ्यूम फ्री मिलेगा, ठीक है ना। ऑयल शैम्पू और क्रीम आप खरीदें अपने पैसों से, साथ में साबुन यानी कि जो जाफरानी साबुन है या मिल्की साबुन है, आपकी मर्जी है जो भी खरीदना चाहे, और साथ में परफ्यूम, ठीक है जनाब, ये आपको फ्री मिलेगा। तो ये यकीन कीजिए, इतनी बचत आज तक हमने जब से कंपनी बनी है किसी इलाके को नहीं दी है। 1500 के ऊपर 200 छोड़ देते हैं, 300 छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1000 रुपए की चीजें हम दे रहे हैं और साथ में 500 की चीजें फ्री दे रहे हैं आप लोगों को। ये इसलिए कि न्यू एरिया के अंदर हम गए हैं और हम ये चाहते हैं कि ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा मशहूर हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे इस्तेमाल। अगर मैं, यकीन कीजिए, अगर मेरी इतनी इस्तेआत हो कि मैं सारे टांक वालों को अपनी प्रोडक्ट फ्री में भिजवा दूं, तो मुझे इतना यकीन है, इतना यकीन है कि अगर हम 5 लाख की प्रोडक्ट आप लोगों को फ्री देना, 5 लाख की, तो अगले महीने आपने 10 लाख की हमारी खरीदनी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट आपको मजबूर करेगी कि आप फिर से खरीदें। लेकिन स्टार्ट है हमारा अभी आपके एरिया के अंदर, तो ये छोटा सा पैकेज हमने आप लोगों को दिया है, 2 चीजें मुफ्त दी हैं, इस वजह से कि जो इंटरेस्टेड हैं जो लोग, ठीक है जनाब, अगर बिल्कुल फ्री कर देते तो फिर तो हर चीज खत्म हो जानी थी, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा हमने इंटरेस्ट आप लोगों को रखा है कि उसी बंदे को 2 चीजें फ्री दी जाए जिसका दिल बना है, जिसका ख्याल आया है और जो बिस्मिल्ला करना चाहता है केसन के प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो मंसूर जनरल स्टोर है जनाब टांग के अंदर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, उनसे आप केसन के प्रोडक्ट जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। आप लोगों के मैसेजेस हमारे साथ मौजूद हैं। डेरा इस्माइल खान में भाई ये ग्लूटा वाइट रेंज मौजूद है, और जो है, अच्छा जी, डेरा वाले अभी सोच रहे होंगे कि भाई केसन कंपनी हमेशा रमजान, ईद उल फितर, ईद उल जहा के ऊपर जो है वो डील ऑफर करती है और हमें बचत होती है थोड़ी बहुत, इस दफा क्यों नहीं हो रही। आपको पता है कि भाई पिछले 2.5-3 माह के अंदर कितनी ज्यादा प्राइसेस जो है फ्यूल की बढ़ी हैं, यानी कि 180 से कहां हम चले गए, 450 तक चले गए। और आपको पता है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। यहां तक मैं आपको सिंपल बताऊं कि जो कार्टन का, जिस कार्टन का खर्चा 400 रुपए था, आज उसी कार्टन का जो किराया है

हम 700 रुपए, 750 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज आ गया। इसी तरीके से हमारी हर प्रोडक्ट पिछले 3 माह से हम बहुत इस पोजीशन में हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, ये नहीं कहता कि हम सेल नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ गए और हमने किसी भी चीज का रेट नहीं बढ़ाया, किसी भी चीज का 1 रुपया रेट भी इंक्रीज हमने नहीं किया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ईद की ऑफर क्यों नहीं आ रही, डेरे वाले भी और पहाड़पुर वाले भी। भाई बात यह है कि आप यकीन कीजिए कि जो अखराजात पीछे से हमारे ऊपर बढ़ गया है ना, तो शायद हो सकता है कि इस ईद के ऊपर आप लोगों को ऑफर हमारी तरफ से कोई डील ना मिले, लेकिन फिर भी भरपूर कोशिश होगी कि आखिरी 1 हफ्ते के अंदर जो है हम उन लोगों को जो कि इंतजार में होते हैं कि केसन अपनी डील कब ऑफर करेगी, तो उसमें भी आप लोगों के लिए ढेर सारी बचत होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आपको सस्ते दामों मिल रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल जो पोजीशन है वो मैंने आपको बताई है कि क्या सूरत हाल है। एनी हो, कोशिश हमारी फिर भी होगी कि आपको फैसिलिटेट करें, क्योंकि आज तक कोई एक ऐसी ईद ऐसी गुजरी नहीं है कि जिसके ऊपर हमने आपको ईदी ना दी हो, आपको ईद के ऊपर हमने कोई बचत वाली डील ऑफर ना दी हो। साकिब हमारे साथ हैं चश्मे मिराज से, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और तमाम सुनने वालों को कहते हैं कि प्यार भरा सलाम। सो वेरी मच जी, दुर्योधन हमें सुन रहे हैं ग्लोबल FM 91 से।

जी जनाब, सॉरी ब्रेक के लिए, लेकिन अगर अभी मैं ब्रेक ना लेता तो मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जानी थी। ठीक है जनाब, तो इस मैंने दिल के ऊपर पत्थर रख कर मैंने कहा ब्रेक थोड़ी सी ले लेते हैं, नहीं तो फिर मेरी चाय अभी जो है ना फिर इसके बाद पीने के काबिल नहीं होनी थी, क्योंकि 4:10 पर मुझे चाय पेश की गई और अभी 4:50 हो रहे हैं। 50 मिनट में चाय का क्या हाल होता है। सूर्य अदन है हमारे साथ, यूजर ऑफ ऑनलीकेशन नेचुरल। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज भाई जान एंड मोहतरम उस्ताद जी, जुमा मुबारक टू यू एंड यूर ऑल लिसनर्स। बहुत प्यारे मौसम, तेज हवा और आंधी के साथ वेलकम वेलकम टू द शो। आप लिसनर्स के लिए क्या कुछ नहीं करते। आज जाना सलाम, आज ये कलाम तो प्ले कर दीजिएगा, सैयदा अरीबा फातिमा की वॉइस में है, याद आता है तेरा दरबार या अल्लाह। चलो जी, रोज रोज तो जो है हमसे दुरे अदन जो है वो फरमाइशें नहीं करती हैं, तो कोशिश करते हैं अरूबा की दरबार याद आता है जनाब। अरीबा बहुत प्यारी आवाज है इनकी, जो नात खां हैं अरीबा, ठीक है जनाब, ये अरूबा हैं और वो अरूबा हैं, ठीक है, अरीबा फातिमा नाम है उनका, उन्हीं के नाम से इनका मिलता जुलता नाम है। एनी हो, कोशिश करते हैं कि ये प्ले हो जाए अगर कोई नेट का इशू नहीं आता तो, ठीक है जनाब। और याद आता है तेरा दरबार या अल्लाह जी, क्यों हो गया। और कहते हैं कि मेरी दुआ है कि अल्लाह अपनी वो मोहब्बत जो आज के दिन अपने बंदों पर नाजिल फरमाता है वो सब आप पर और आपके शो में आने वाले सब लिसनर्स पर नाजिल फरमाए, आमीन। सुमाम जी जनाब, जुमा का खूबसूरत दिन है और जुमा का दिन बहुत बरबर बहुत बाबरकत होता है और ये तमाम दिनों का सरदार है। आपसे सलाम की हदीस मौजूद है कि जितने दिन जिनके अंदर सूरज निकलता है उनमें सबसे फजीलत वाला दिन जुमा का दिन है, और इस दिन बहुत ज़्यादा अहतमाम आम दिनों से हट के इबादात का होना चाहिए। सूरह काफ की तिलावत है या फिर दुरूद पाक की कसरत है, बहुत ज़रूरी है जनाब, और पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए नूर फैल जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस इनकी घड़ियों में, इस जुमा की घड़ियों में कोई एक कबूलियत की घड़ी ज़रूर होती है, तो इस दिन बहुत सारी दुआएं मांगा करें जनाब, अपनी खैर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, बीमारों के लिए, कर्जदारों के लिए ढेर सारी दुआएं मांगा करें, किसी की कबूल हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी है, एक घड़ी ज़रूर है इन सातों में जो आपकी दुआ को कबूल करती है।

0: स्पेशल सलाम टू यू आने महानूर और महानूर को सलाम कह रही हैं और सोनिया आपी को भी सलाम कह रही हैं। बहुत हमसे खेमटे हमारे साथ हैं। जिंदगी खूबसूरत तब बनती है जब इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना सीखे। जुमा मुबारक इन सबको सलाम। थैंक यू। अस्मत पहलवान है कहते 10 मिनट से आपकी आवाज नहीं आ रही पहाड़पुर में, वहां पर डिस्कनेक्ट हो गए हम। जी टांग में अस्सलाम वालेकुम भाई, आज मैंने वेट कम पेट कम खरीदी है, इंशाल्लाह रिजल्ट देगा। सबको सब लिसनर्स को सलाम। और नौमी भाई जान से रिक्वेस्ट है कि वापस टांग, हम सब बहुत ज्यादा मिस करते हैं। स्पेशल सलाम नुमान शेख भाई दिलराज टांकर जी। अच्छा मेरी बहन, वेट कम पेट कम आपने ले ली है, बहुत शुक्रिया आपके एतमाद का, आपके ट्रस्ट का। और इंशाल्लाह आपके पैसे जाया नहीं जाएंगे, आपको इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर लोग बताएंगे, आपका जिस्म आपको बताएगा कि अब आपको कपड़े कितने ढीले पड़ गए हैं। ठीक है जनाब, ये बिल्कुल आपको कपड़ों से फील होगा कि पहले कैसे फील होता था आपको और अब कैसा हो रहा है। एक चम्मच खाली पेट सुबह लेना है आपने और एक चम्मच आपने रात को खाने के बाद इसको खाने। कोशिश करें थोड़ा सा डाइट को कंट्रोल करें, जहां पर आप 2.5 रोटियां खा रही हैं तो आधी रोटी कम से कम कम कर दें। ठीक है जनाब, थोड़ी सी वॉक भी 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए वॉक का सीन भी कर दें। कोशिश करें फौरन खाने के बाद जो है पानी वगैरह ना पिए। ठीक है, थोड़ी सी डाइट कंट्रोल करेंगे, थोड़ी सी साथ में एक्सरसाइज होगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं कह रहे हम तो कहते हैं कि एक्सरसाइज भी ना करें डाइट भी ना करें, लेकिन ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं जब आप थोड़ा सा अपना ख्याल करेंगे। आमिरवान पाकिस्तानी हमारे साथ हैं। सलाम खलील भाई केसन ग्लूटा वाइट जिंदाबाद। लास्ट में चाचा अमानुल राही जुल्फकार अंकल को सलाम कहते हैं। जी जनाब, ग्लूटा वाइट वाकई ही जिंदाबाद है। और आप लोग बहुत सारी क्रीमें भी, डेरा में रहने वाले लड़कियां और लड़के और टांग में रहने वाले, आज पहाड़पुर के लोग हमारे साथ नहीं है, बहुत सारी क्रीमें आप लगा चुके होंगे। हम नहीं कहते कि किसी क्रीम ने आपको रिजल्ट नहीं दिया होगा, हर क्रीम रिजल्ट देती है। जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है ना, वो पागल नहीं होती कि आपको उसके अंदर रिजल्ट ना मिले, फिर तो वो अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। लेकिन सिर्फ रिजल्ट काफी नहीं होते हैं, इस चीज को मद्देनजर रखें, सिर्फ रिजल्ट काफी नहीं होते। मैं वो जो बात कर रहा था सैयद बैकर्स मौलाना फजल रहमान वाली गली के साथ जो बेकरी है, तो वो कहते भाई मैं आपकी हर प्रोडक्ट जो भी आती है ना आंख बंद करके ले जाता हूँ। और वजह यह है कि हमें पता है कि ये नेचुरल कंपनी है। ठीक है जनाब, अगर किसी को रिजल्ट थोड़ा बहुत नहीं भी मिलेगा ना, तो नुकसान किसी को नहीं होगा। हमारी दुकानदारी वो कह रहा था कि तब खराब होती है जब लोगों को हम कोई चीज देते हैं और अगले दिन वो चेहरे के ऊपर रेडनेस लेके आ जाते हैं, जला हुआ चेहरा लेके आ जाते हैं, दाने लेके आ जाते हैं और हमें बताते हैं भाई आपने क्या चीज दी थी, ये देखिए हमारी स्किन खराब हो गई। कहते केसन के ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया है कि हमें पता है कि 4 साल के अंदर कोई एक कस्टमर भी हमारे पास नहीं आया कि फेस वॉश ले गया था तो दाने निकल पड़े, क्रीम ले गया तो दाने निकल पड़े। ठीक है, यानी कि कभी भी कंप्लेंट नहीं आई। ये हो सकता है किसी को रिजल्ट कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, लेकिन ये मैटर नहीं करती ये चीजें, इसको लोग इतना वो नहीं करते। असल मसला लोगों के लिए ये होता है कि उनको नुकसान ना पहुंचे, सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों को नुकसान ना पहुंचे, स्किन खराब ना हो। तो नेचुरल कंपनी का यही फायदा होता है कि जनाब नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा सा टाइम गेनिंग होते हैं, लेकिन आपकी स्किन जो है वो कभी भी खराब नहीं होगी। तो आप लोग नो डाउट बहुत सारी क्रीमें लगा चुके होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी क्रीम जिसने आपको थोड़ा बहुत नाराज किया है, ठीक है जनाब, आपको रिजल्ट तो दिए हैं लेकिन आपकी स्किन को थोड़ा सा खराब किया है, तो एक दफा केसन की ग्लूटा वाइट रेंज को जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ क्रीम के साथ या ग्लूटा वाइट का साबुन खरीदें या फिर ग्लूटा वाइट का फेस वॉश साथ में जरूर खरीदें, क्योंकि इन दोनों के अलग से भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। यानी कि अगर आप क्रीम लगाएं ना लगाएं ना, आप सिर्फ केसन ग्लूटा वाइट फेस वॉश खरीदें या केसन ग्लूटा वाइट सोप खरीदें, इनके अलग से लगाने के अंदर भी बहुत मजे के रिजल्ट है। ठीक है जनाब, इनको जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी मैंने अभी तो क्रीम भी इस्तेमाल नहीं की, केसन की ग्लूटा वाइट की, अभी तो मैंने क्रीम ही नहीं लगाई। यानी कि अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके सिर्फ साबुन ले लें। ठीक है जनाब, टांक वालों सुन रहे हो क्या, ये मेरा मैसेज स्पेशली आप लोगों के लिए होता है भाई, आप यू आर द मोस्ट कंसर्निंग पीपल फॉर मी। भाई सलाम भाई, आप उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और हम आज जाग रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। हम सब सुनने वालों को दिल से सलाम। और आंधी है भाई, बस हाथ फौरन स्टार्ट, बारिश स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा। दानिया हमारे साथ हैं डेरा इस्माइल खान से, दानिया कब स्टार्ट कर रही हो फिर तुम केसन की ग्लूटावाइट, हैं जी? कब कब इस्तेमाल कर रहे हैं केसन की ग्लूटावाइट, क्योंकि ये हाजमा कंट्रोल के ऊपर इसका जोर है इस लड़की का, हैं जी? ने आप स्किन का नहीं सोचा तुमने अभी तक, तो इस दफा सोचो और ग्लूटावाइट का सोचो जी। अस्सलाम वालेकुम
1: मुबारक।
0: जी, जुम्मा मुबारक। शबरा उस्ताद के एच कुल सर मौजूद सही, कि हाल है? ठीक ठाक है तुम?
1: बिल्कुल ठीक ठाक, सारे जिसना को जुम्मा मुबारक, तो बाकी सारे जिसना को सलाम, तो मौसम भी खुशखबरी का और मुबारकबाद। अच्छा मौसम अच्छा थी, अल्लाह पाक जरा इस तूफान को उसकी टाले, तूफान तब होंगे लेकिन रहमत की बारिश आ गई, जुम्मा तो मुबारक की वजह को महफूज, हर सारा पाकिस्तान के उम्मत मुसलमान सारा को महफूज रखे। बाकी ग्लूटावाइट थी गया ते वेट कम पेट कम ते शफा दर्द इना को इस्तेमाल करो, तो खसूस में सारा टाक वाला को सारा को ते खसूसी मास्टर फतेले को सलाम दे सा ते आई आसू जी जेरी थोड़ा को डिस्काउंट दी ता खलील भाई ता इस आजार दा तुसा फायदा चाहो, ये अगर फायदा तुसा नहीं ता वत सारा खार पूरी ना कर इना ता तुसा बहु आजरा दी चेन, लेकिन टाक दा हक थी दाई ते टाक वाले
0: बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद थे ये हमारे केसन के मशर हैं भाई, ठीक है जनाब। और जब इनकी कॉल आती है तो मुझे कोई बात करनी नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद ही सब बातें कर देते हैं। और केसन के वेल विशर हैं जनाब, ऐसे वेल विशर कंपनी को मिल जाए तो कंपनी कैसे आगे ना जाए, जब वो मेरी तरफ से बात भी कर रहे होते हैं। और ये ऐसे हमारे वेल विशर हैं जो ना सिर्फ वेल विशर हैं बल्कि साथ साथ में ये ग्रंटर भी हैं, ये केसन के ग्रंटर हैं बेसिकली। मैं तो गारंटी देता हूँ कंपनी के मालिक हूँ ना, मैंने तो गुनगाने हैं कंपनी के, मेरी कंपनी है, सेल करनी है हमने भी चीजें तो। लेकिन असल बात होती है कि जब यूजर ग्रंटर बन जाए आपके, यूजर वेल विशर जो है वो आपके ग्रंटर बन जाए और वो आपको एडवाइस कर रहे हो कि भाई केसन की ये प्रोडक्ट खरीदी है। तो जनाब केसन की प्रोडक्ट तो बहुत सारी हैं, लेकिन लेटेस्ट इस दौर के 2026 को जब हम लेते हैं कि भाई इस दौर के अंदर वाइटनिंग में सबसे फास्ट फार्मूला कौन सा जा रहा है, तो वो ग्लूटावाइट फार्मूला है। 100% ये बात है कि ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग फार्मूला है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो नाइट क्रीमें होती हैं या ब्यूटी क्रीमें, उनकी सबसे बड़ी मलका कौन सी है? गोल्डन बर्लन। अच्छा, अब उस कंपनी ने भी जब लोगों ने खरीदना शुरू की ग्लूटावाइट को तो उनकी सेल कम हो गई। और जब उनकी कम हुई, क्योंकि लोग तो ग्लूटावाइट अब लगाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्लूटावाइट के फायदे इतने ज्यादा हैं, तो उन्होंने पिछले से पिछले महीने जो है एक एड चलाया कि भाई अब आपको गोल्डन बल के अंदर भी ग्लूटाथियोन मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कितनी अहमियत है इस फार्मूले की, कि एक बहुत बड़ी कंपनी जिसके खरबों में सेल है लेकिन वो भी मजबूर हो गई ग्लूटाथियोन को अपनी क्रीम के अंदर शामिल करने के लिए, क्योंकि लोग उससे दूर होते जा रहे थे कि भाई हमने तो नया फार्मूला लेना है, हमने तो जो है ग्लूटावाइट ही लगानी है, क्योंकि फायदे इतने ज्यादा हैं। ना सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ाती है, आपकी इच्छाइयों को खत्म करती है। जफराबाद में मुझे बहनें सुन रही हैं बहुत सारी, तो जनाब हाजी जरी जनरल स्टोर एंड अब्दुल रहमान जनरल स्टोर पर जाइएगा, वहां पर आपको ये केसन की ग्लूटावाइट रेंज बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस वक्त। यकीन कीजिए कि जफराबाद में कुराई साइड के ऊपर और जफराबाद डेरा में हमारी सबसे ज्यादा जो सेल हो रही है ना इसी इलाके के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने ट्राई की तो उनको इतने जबरदस्त रिजल्ट मिल गए कि माशाल्लाह अब दुकानदार कार्टनों के कार्टन हमसे खरीद रहे हैं। जैसे कि हाजी जरी जनरल स्टोर है, उनके पास जाएं और पूछें कि भाई केसन की ग्लूटावाइट कैसे लोग चल रही है, तो वो बोलेंगे भाई चाल नहीं रही, भाग रही है। अब्दुल रहमान जनरल स्टोर है, कारी जनरल स्टोर है, इन सब के पास केसन की ये प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है जनाब। इसके अलावा अगर न्यू बनू चुंगी के ऊपर है तो सुबहान जनरल स्टोर हो गया, कराची जनरल स्टोर शकील भाई, या फिर जो है बलोच करियाना, जी जनाब वहां पर आप हमारी ये रेंज ग्लूटावाइट रेंज जिसको हम कहते हैं जी, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। खलील अहमान साहब कैसे हो? इमरान मरवा डिस्ट्रिक्ट टांग से, हम 88.4 पर आपको सुन रहे हैं। शफी, शिफा दर्द ऑयल किस तरह यूज करना है? जी जनाब, शिफाय दर्द ऑयल आपने लेना है और जो आपकी मुतासर जगह है, अगर आपके घर में जो पेशेंट है, चाहे उसके कमर में दर्द है या फिर जोड़ों में दर्द है या फिर उसको जो है घुटनों में दर्द है या जिस्म का कोई मसल सूजा हुआ है, एक्सीडेंटल कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, आपने 8-10 कतरे डालकर इसकी मालिश करनी है, उसी जगह के ऊपर मालिश करेंगे और इतनी देर तक मालिश करें कि वो मुकम्मल। आप कैसे हैं? प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है और भाई उस दिन मैंने वेट कम पेट कम फकी महमूदन स्टोर से खरीदी थी। अच्छा जी, बहुत रिजल्ट बताऊंगा। और भाई आपका फेसबुक पे केसन शॉप के ऊपर आप आ सकते हैं, वहां पर आपको हमारा शो सुनने को मिलेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जनाब इस गर्मियों में अगर आप अपनी स्किन का सोच रहे हैं तो एक दफा केसन की ग्लूटामाइन का जरूर सोचेगा। क्रीम सोप और फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए और उन लोगों में शामिल हो जाइए जिनको हम ढेर सारा प्यारा कहते हैं। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह।

0: 不会浮躁。
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल्ले, अविलाजी सुनत अमल्ले।
3: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़िदली यो, डेर गर्जिदली कड़िदली यो।
2: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
3: और द नुरु मालूमातो दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
2: 0319 55 23 404।

तो हम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांकी नशरिया, हमारे साथ रहिए।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जुकुन फयकून का मालिक है, एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांकी नशरिया, हमारे साथ रहे।

ஓகே ஜி, விசரா விசரா சிக்க மதுகர ஜி, நமுன பஹ தெர்க்க வசி ஜி, நாம் தெர்க்க மசி ரூட்டின் சன சூரத் சிக்க அர்ஜென்ட் ஃபிஷல் விசரா விசரா ஜி ரூட்டின் சன குட் கிரீம் மஹ தெர்க்க வசி ஜி சவால் ஜவாப் சுகும் தெக்க நா பருத ஷேசி தி ஜி और चिचा जो ठीक रुका वो तब इनाम मिले जी सिमुला भाई वरुण दिमिश सवाल जो ठीक के रखने हो सी सिमुला भाई चिकम देखे ना तो समत अकबल नमा पर मैसेज करा वाला शे प्रोग्राम ना बात की जी इंशाल्लाह कास्तमा बल इनाम मिले हो शिखा कदीमो आवाज और जी बिल्कुल माते रवल जी हां चिकल है वीर से बिल्कुल जी माते रवल शे इंशाल्लाह कास्तम अकबल इनाम रिसीव शा 0-3-5-11-4-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
شیمپو ٹینشن ہیرا واخلے چاہا وشتان غرسی شی قسم کے سم جگم دیکھا دا قذاف سٹیڈیم رجوات تے کنے تے تے سی لاش وشتان چگم دیکھا دا انسان ہائس کی خپل رول چگم دیکھا دا کہ چکل دے انسان وشتن نے کنے سی انسان ڈیر خوش لے وی کشتا کپڑے چولی وی سی کہ وشتان نے نہیں کنے سی بس ہائس خروپ شاہ بالکل جی لاش ہے یارا وے خلیخا